0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: शनिवार 6 जून 2026 का दिन और SBS के हिंदी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आपको अनीता बरार का नमस्कार. श्रोताओं, सबसे पहले कि आज हम जिस भूमि से इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं उसके पारंपरिक उत्तराधिकारियों को स्वीकार करते हैं. SBS हिंदी कुलीन राष्ट्र के वारंजरी लोगों, उनके अतीत और वर्तमान के बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है. हम उन सभी मूल निवासियों और टॉरस स्ट्रेट आइलैंड के पारंपरिक उत्तराधिकारियों का भी सम्मान करते हैं जिनकी भूमि से आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं. श्रोताओं, सप्ताहांत का दिन है तो हमेशा की तरह कार्यक्रम में होंगे गाने, बॉलीवुड की खबरें और इसके अलावा हम पिछले शनिवार को बात कर रहे थे मानसिक स्वास्थ्य की, तो बस उसी अंश को आगे बढ़ाते हुए उसका दूसरा भाग भी हम सुन सकेंगे. लेकिन अभी कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपके संदेश भी कार्यक्रम के दौरान आते रहेंगे 0439799767 पर. और अभी सबसे पहले न्यूज फ्लैश. नमस्कार, शनिवार 6 जून के लिए यह है न्यूज फ्लैश और मैं हूं अनीता बरार. प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीसी का कहना है कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ वन ऑन वन मीटिंग फायदेमंद रही और इससे व्यापार के लिए प्रैक्टिकल नतीजे मिले, साथ ही पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग भी गहरा हुआ. क्रिस्टोफर लक्सन 2 दिन के दौरे पर ऑस्ट्रेलिया में हैं, जिसमें आज यानी शनिवार 6 जून को क्वींसलैंड के नूसा में एंथनी एल्बनीसी के साथ सालाना नेताओं की मीटिंग भी शामिल रही. एल्बनीसी का कहना है कि कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक देश एक साथ मिलकर काम कर सकेंगे, जिसमें इस साल के यूएन क्लाइमेट समिट से पहले होने वाले कार्यक्रम भी शामिल हैं. पुलिस सिडनी के साउथ वेस्ट में एक कथित घर में घुसपैठ की जांच कर रही है और उसने लोगों से किसी भी तरह की जानकारी देने की अपील की है. पश्चिमी सिडनी के ग्रीन एकर में एक घर में इमरजेंसी सर्विस को बुलाया गया जब खबर मिली कि एक ब्लेड वाले हथियारों से लैस 4 लोग घर में जबरदस्ती घुस आए हैं. हमले के दौरान हाथ में गंभीर चोटें आने के बाद 23 वर्ष का एक व्यक्ति हॉस्पिटल में है और उसकी हालत स्थिर है. ऑस्ट्रेलिया समेत कॉमनवेल्थ देशों में ब्रिटिश किंग के जन्मदिन के मौके पर ऑफिशियल सेलिब्रेशन यानी कार्यक्रम हो रहे हैं. लंदन में टूपिंग द कलर परेड आमतौर पर हर साल जून के दूसरे शनिवार को होती है. क्वींसलैंड और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर सभी ऑस्ट्रेलियन राज्यों और टेरिटरीज में सोमवार 8 जून को पब्लिक हॉलीडे रहेगा. सिडनी में किंग के जन्मदिन की सेरिमोनियल परेड में न्यू साउथ वेल्स की गवर्नर मार्गरेट बेजली ने भाषण दिया. वैसे ऑस्ट्रेलिया के हेड ऑफ स्टेट किंग चार्ल्स तृतीय का जन्म नवंबर में है.

0: इस सप्ताहांत पर हजारों लोग नॉर्दर्न टेरिटरी के दूरदराज क्षेत्र बरुंगा में फर्स्ट नेशन कल्चर म्यूजिक और स्पोर्ट्स के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। बरुंगा ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण जगह है। 1988 में उस समय के प्रधानमंत्री बॉब हॉक को बरुंगा स्टेटमेंट दिया गया था, जिसमें फेडरल सरकार से आदिवासी लोगों के अधिकारों को मान्यता देने की अपील की गई थी। बगाला एबोरिजिनल कॉरपोरेशन के सीईओ जारा मारिशियो का कहना है कि ये इवेंट कम्युनिटी ओनरशिप और आत्मसंकल्प यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन के बड़े लक्ष्यों को दिखाती है। और भारत में अंडमान के समुद्री क्षेत्र में प्राकृतिक गैस का नया भंडार मिलने की पुष्टि हुई है। तीसरे खोजी कुएं में हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी मिली है, जिसे देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एनडीटीवी से मिले समाचार के अनुसार ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जानकारी दी है कि अंडमान के ऑफशोर ब्लॉक में स्थित विजयपुरम 3 नामक तीसरे खोजी कुएं में प्राकृतिक गैस मिली है। ये कुआं ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत ड्रिल किया गया है। कंपनी के अनुसार यह खोज इस क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी का एक अहम संकेत है। अन्य समाचारों और समुदाय के समाचारों के लिए आप हमारी फेसबुक और हमारे वेब पेज sbs.com.au/hindi से जुड़े रहें। न्यूज फ्लैश समाप्त हुआ। न्यूज फ्लैश के बाद आइए श्रोताओं, बात करते हैं बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कि कैसे पहचाने कि अगर कोई अलग तरह का संकेत मिले। इस विषय में हम पिछले शनिवार को बात कर ही रहे थे और वो जो अलग संकेत हैं उसमें है गुस्सा या जिद करना। एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अपर्णा चावला के साथ में हमारे सहयोगी शशि जी बात कर रहे थे, तो आइए शशि कुमार की बात को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं उस बातचीत का ये दूसरा और अंतिम भाग।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं SBS हिंदी और मैं हूँ शशि कुमार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिस पर अक्सर घरों में चुप्पी रहती है, बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य। पढ़ाई का दबाव, सोशल मीडिया और उम्मीदों का बोझ, ये सब बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन कई बार हम पहचान ही नहीं पाते कि बच्चा सिर्फ जिद नहीं कर रहा बल्कि भीतर से जूझ रहा है। तो बच्चों की मेंटल हेल्थ से जुड़े संकेत क्या हैं और माता पिता कैसे समय रहते मदद कर सकते हैं, इसी पर है हमारी आज की यह खास बातचीत। और हमारे साथ हैं मेंटल हेल्थ विशेषज्ञ डॉक्टर अपर्णा चावला। तो सबसे पहले तो आपका SBS हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है।
2: शुक्रिया, धन्यवाद।
1: नया साल अक्सर नई शुरुआत और नए लक्ष्यों से जुड़ा होता है। आपके अनुभव में साल की शुरुआत बच्चों और किशोरों की मानसिक सेहत के लिए क्यों चुनौतीपूर्ण हो सकती है? और आपको बता दूं कि इस बातचीत का पहला भाग आप सुन चुके हैं, जिसमें हमने जाना कि नए साल की शुरुआत बच्चों और किशोरों के मानसिक सेहत के लिए क्यों चुनौतीपूर्ण हो सकती है, अलग अलग उम्र में बच्चों की मानसिक परेशानियां क्यों अलग होती है, क्या आजकल के बच्चों पर कहीं अधिक उम्मीदों और प्रतिस्पर्धा का दबाव है, माइग्रेंट परिवारों के बच्चों की क्या मानसिक चुनौतियां होती हैं। तो आइए अब सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। और आपको बता दूं कि इस अंश में व्यक्त किए गए विचार वक्ता के निजी हैं। SBS ना तो इससे सहमत है और न ही असहमत।
3: तो सबसे पहले तो आपका SBS हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है।
2: शुक्रिया, धन्यवाद।
3: और बच्चों में ऐसे कौन से संकेत हैं जिसको माँ बाप को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?
2: बच्चे चुप चुप रह रहे हो, बच्चे मतलब बात आपसे घर में करना बंद कर दें, अगर वो स्कूल जाने से मना कर दें, एंजाइटी ज्यादा हो, तुम आपके बच्चों के थोड़े वो कम नंबर आने लगे, स्लिप हो जाएं चीजों में, तो ये छोटी छोटी ऐसे साइंस हैं कि आपको ध्यान देना चाहिए कि इसका मतलब है कुछ किसी फ्रंट पे कुछ गड़बड़ चल रही है, इसीलिए बच्चों ने मतलब कि कुछ प्रॉब्लम है। उनको डांटने के बजाय उनसे बात करें, उनकी टीचर से बात करें, पता करें कि किस रीजन से मतलब उसकी उनकी परफॉर्मेंस स्लिप हुई है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है तभी बच्चों की परफॉर्मेंस स्लिप होती है, तो ये सारी चीजें थोड़ी ध्यान में रखनी चाहिए।
1: और माँ बाप यह

0: कैसे जान सकते हैं कि कहीं बच्चा साइबर बुलिंग से तो परेशान नहीं है? इसके क्या संकेत हैं?
1: आई थिंक साइबर बुलिंग बहुत मुश्किल है पता करना. ये कहेंगे कि पहले तो आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कुछ आपके वो मतलब आपको बच्चों पे मतलब कुछ गेम्स और वगैरह में

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: करना कि वो किसके साथ जा रहे हैं, किन से बातें ज्यादा करते हैं, उनके नंबर्स अपने पास रखना, उनसे बात करना, क्योंकि आपको उनके फ्रेंड्स से ज्यादा क्लूज मिल सकते हैं अगर उनसे नहीं बात हो रही है तो।
5: और कब माता पिता को समझ जाना चाहिए कि

0: advertising.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: ना ताकि वो इजी से बात कर सके आपसे. उनको ये यहाँ पे बहुत आजकल kids yoga, art of living में kids के mindfulness सिखाते हैं आपको, breathing technique सिखाते हैं. ये सब बहुत फायदेमंद है. हमारे यहाँ पे ये माना नहीं जाता कि मतलब बच्चों को हम माइंडफुलनेस सिखाते हैं, और ये मतलब बेसिकली ये इंडियन वेज ऑफ मेडिटेशन को मतलब आप अगर इंडियन वेज ऑफ मेडिटेशन सिखाते हैं माइंडफुलनेस, वो आप अगर अंग्रेजी भाषा में बोले तो उन्हें माइंडफुलनेस मेडिटेशन कहा जाता है. बट जो हमारे डिफरेंट टाइप के मेडिटेशन होते हैं, वो ब्रीदिंग टेक्निक्स योगा में वो पार्ट है ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन के. सो आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत ऐसे माइंडफुलनेस कोर्सेज हैं बच्चों के लिए यहाँ पे, और किड्स योगा प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको ब्रीदिंग टेक्निक सिखाते हैं, जो कि बच्चों को अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करना सिखाते हैं. अगर वो बच्चों को बचपन से छोटी उम्र से वो सिखाया जाए तो एंग्जाइटी को काबू करना बहुत ईजी है. तो ये बहुत पावरफुल टेक्निक है जिसको हम इतना तवज्जो नहीं देते. सेकेंडली, बच्चों को रूटीन सिखाना कि किस टाइम पे क्या करना चाहिए, खाने की रूटीन, सोने की रूटीन, नाइट टाइम रूटीन, मॉर्निंग रूटीन, ये बहुत एक सिंपल चीज है जो कि एंग्जाइटी को बहुत अंडर कंट्रोल लगती है. थर्डली, बच्चों को ये सिखाना कि आपको जब मतलब कुछ अच्छी चीजें दिन में, कुछ हैबिट्स कल्टीवेट करना, जैसे कि जिससे आपको खुशी मिलती है, जैसे कि रीडिंग हैबिट हो, कोई बुक रीडिंग हैबिट हो, या फिर आपको कोई जिस एक्टिविटी में आपको इंटरेस्ट है, जैसे कि बच्चों को टीम स्पोर्ट, उससे बच्चों की एंग्जाइटी बहुत कंट्रोल में आती है. टीम स्पोर्ट एक्टिविटीज हो, या फिर अगर बच्चों को पेंटिंग का शौक है, ड्राइंग का शौक है, ऐसी कुछ एक्टिविटीज जिससे आपकी मतलब आप उस चीज पे फोकस कर सकते हैं, उससे आपके एक इमोशंस को एक आउटवर्ड मतलब एक तरीका जरिया मिलता है एक्सप्रेस करने का. ड्राइंग से, टीम स्पोर्ट से, आपको कॉन्फ्लिक्ट से डील करना आता है. तो ये कुछ चीजें ध्यान में रख के मतलब ये प्लेजर के लिए की जाए, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स नहीं, मैं नहीं ज्यादा ध्यान दूंगी, बट ये जो चीजें आप अपने प्लेजर के लिए करते हैं, इसमें आपको कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करना है आपस में, ये सब चीजें सिखाई जाती हैं. आप अपने इमोशंस को कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं पेंटिंग के थ्रू, अगर आपको बात करने में तकलीफ है, ये आप सब ये इस तरीके से आप मतलब बच्चे इसमें बहुत इनको फायदा हो सकता है, छोटी छोटी चीजों से.
5: जी, और माता पिता के लिए नए साल पर आपकी सबसे महत्वपूर्ण सलाह क्या होगी?
4: आई थिंक नए साल में आपको बच्चों को छोटी छोटी रेजोल्यूशंस करने के लिए इनकरेज करें, और उनको आई थिंक मैं यही कहूंगी कि उनको ये बताना जरूरी है कि स्लो एंड स्टेडी हर चीज में आप उनको ये सिखाएं कि कंसिस्टेंसी ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी गोल को अचीव करने के लिए, और आपको स्लो एंड स्टेडी उस गोल पे फोकस रह के कंसिस्टेंट रहना जरूरी है. ज्यादा की या हालांकि कि आप एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करें कि ये आपसे मतलब आप उस चीज रिजल्ट को फोकस करें, कंसिस्टेंसी पे आपका फोकस रहे, वो ज्यादा बेटर है.
5: डॉक्टर अपर्णा चावला जी, SBS हिंदी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
4: थैंक यू.
5: इस अंश में दी गई जानकारी और सलाह सामान्य है, अपनी विशेष स्थिति के लिए किसी विशेषज्ञ से संपर्क करें. इसी के साथ शशि कुमार को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए SBS हिंदी.
6: तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे कि बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति आप कैसे सावधान रह सकते हैं और किस तरह से समय रहते ही सलाह ले लेना कितना आवश्यक होती है. आपके संदेश आ सकेंगे ना मेरे पास, मुझे यही उम्मीद है, 04397997667 पर. और

0: के साथ एक बात साझा करना चाहूंगी। कुछ समय पहले एक टीवी कार्यक्रम में कोई पुराने जमाने के गाने की बात चल रही थी और वो बहुत ही एक मज़ेदार हिंदी गाना था, बहुत ही मजाकिया सा गाना था। तो मुझे लगा कि कई बार वो जो गाने होते हैं उनको सुनने में, आप किसी भी माहौल में हो, आप किसी भी मना स्थिति में हो, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट तो आ ही जाती है। तो क्यों ना आज कार्यक्रम में कुछ ऐसे ही गाने शामिल किए जाएं। तो मैंने तो कुछ गाने सोचे हैं, चाहूंगी आप भी मुझे कुछ अपनी राय भेजें कि ऐसे कौन से गाने हैं जिनको कह सकते हैं कि बिल्कुल हंसी मजाक वाले गाने हैं और उनको सुनते ही मुस्कुराहट तो आ ही जाती है। तो बस आप उन गानों को सोच के मुझे लिखिए और मैं मिलती हूँ आपसे इस अंतराल के बाद।
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
0: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। श्रोताओं, घर में झाड़ू तो सभी लगाते हैं, आपने क्या कभी डिजाइनर झाड़ू की बात सुनी है? जी हाँ, कोई एक दो साल पहले ये जानकारी हमें उपलब्ध कराई थी फैसल फरीद ने कि केरल में एक महिला है लक्ष्मी मैनन, उन्होंने डिजाइनर झाड़ू बनाई है किसके लिए? नेत्रहीन महिलाओं के लिए, और इसको वो छुलाला कहती हैं। अब कहते हैं कि देखने में झाड़ू इतनी सुंदर है कि लोग इसको सजावटी सामान की तरह प्रयोग करने लग गए हैं। लेकिन इससे एक और फायदा हुआ है कि जो बहुत सी नेत्रहीन महिलाएं हैं उनको नया अवसर मिला है, क्योंकि वो भी इस काम में जुट गई तो आमदनी का जरिया बना है। तो देखिए, एक पहल है जिसने एक आत्मविश्वास पैदा किया। तो आइए सुनते हैं फैसल फरीद की ये रिपोर्ट और जानते हैं इसके बारे में कुछ और विस्तार में।
6: सभी घरों में झाड़ू होती है साफ सफाई के काम के लिए। आज आपको एक ऐसी झाड़ू के बारे में बताते हैं जिसको लोग अपने ड्राइंग रूम, लिविंग रूम में डेकोरेटिव आइटम की तरह रखते हैं। खूबसूरत सी दिखने वाली ये झाड़ू नेत्रहीन महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। कोच्चि केरल की रहने वाली लक्ष्मी मेनन द्वारा ये पहल आज लोगों में खूब पसंद की जा रही है। लक्ष्मी अपने प्योर लिविंग नाम की संस्था चलाती हैं। उसी में इन्होंने नेत्रहीन महिलाओं द्वारा ये स्पेशल झाड़ू बनवाने की शुरुआत की। इसको वो छुलाला कहती हैं। देखने में ये झाड़ू इतनी सुंदर लगती है कि आप उसे एक सजावटी सामान की तरह प्रयोग कर सकते हैं। ये सब इतना आसान नहीं है। ऐसी वस्तु बनवाना और फिर नेत्रहीन महिलाओं को ट्रेनिंग देकर उनसे कार्य करवाना अपने आप में बहुत मेहनत का कार्य था, लेकिन आज लक्ष्मी मेनन ने ये कर दिखाया। एक वस्तु यानी झाड़ू ही उन्होंने नहीं बनवाई, बल्कि उन्होंने बहुत सी नेत्रहीन महिलाओं को एक नया अवसर दिया है। वो महिलाएं जो एक शारीरिक विषमता के कारण समाज में बिल्कुल अलग थलग सी थी, उनको एक रास्ता दिखाकर उनके लिए एक आमदनी का जरिया निकाला। इस पहल ने इन महिलाओं के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा किया। उनके दिल में भी एक खुशी उत्पन्न हुई कि उनके द्वारा बनाई गई झाड़ू लोग सिर्फ अपने घर में इस्तेमाल ही नहीं करते हैं बल्कि सजाते भी हैं। लक्ष्मी

0: मेनन अपने अनुभव साझा करते हुए बताती हैं।
1: नमस्ते, मैं लक्ष्मी मेनन बोल रही हूँ कोच्ची केरला से। मैं एक डिजाइनर और सोशल इनोवेटर हूँ। मैं ऐसा बहुत ही सोशल इनिशिएटिव शुरू किया है लास्ट 8-10 ईयर्स में। हम तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स शुरू किया था। इसमें एक है ये चूलाला प्रोजेक्ट, जो ब्लाइंड वीमेन के साथ शुरू किया है। जब भी कुछ नई आइडिया मन में आता है, तब मैं सोचती हूँ कि ये कैसे अंडर प्रिविलेज वीमेन को कुछ बेनिफिट बनाने वाले इनिशिएटिव बना सकते हैं। तो ऐसा एक सर्च और रिसर्च के अंत में मुझे ब्लाइंड वीमेन के साथ करने का ये अपॉर्चुनिटी मिला है।
0: हर नए प्रोडक्ट को लेकर जैसी उत्सुकता होती है, लक्ष्मी मेनन के मन में भी थी, ये प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं, लोग पसंद करेंगे कि नहीं, क्या मार्केट में अपनी जगह बना पाएगा इत्यादि। सबसे बड़ी बात यह है कि ये झाड़ू नेत्रहीन महिलाओं द्वारा बनाई जाती है, इस कारण कोई भी दो झाड़ू एक सी नहीं होती हैं। यही नहीं हो सकता है कि इनमें कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कमी भी दिख जाए। आपको कमी दिख सकती है क्योंकि आप देख सकते हैं, लेकिन ये बात भी है कि जो लोग इसको बनाती हैं वो शायद इस कमी को ना देख पाएं क्योंकि वो अपनी आंखों से देख नहीं सकती। यही अनगढ़ खूबसूरती इस वस्तु को विशेष बनाती है।
1: इसमें तो उनका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलता है, रेस्पेक्ट मिलता है, डिग्निटी मिलता है, और इनके स्किल के बारे में पूरे समाने में लोगों को जानकारी मिलता है। तो एंड ए ब्यूटीफुल प्रोडक्ट इज आल्सो बीइंग मेड बाय देम। वो एक डिजाइन एक्सेसरी बन सकता है। चूला इन मलयालम लैंग्वेज मीन्स ब्रूम, सो आई थॉट उसको म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। तो हमेशा कुछ ना कुछ गीत सुनते ही रहता है, तो मैंने सोचा कि उसको एक म्यूजिकल स्टाइल में उसका नाम भी दे दूँ, इसलिए ये चूलाला नाम दिया है। चूलाला चूलाला ऐसा लोगों के लिए, लोगों को भी गुनगुना सकता है, वो है इस नाम का रीजन। तो जब इसके बारे में सोचा, इस प्रोजेक्ट में बारे में सोचा, तो हमने देखा है कि ये वीव करने के लिए उनका स्किल्स बहुत अच्छा है, ये डेक्सटरिटी बहुत अच्छा है ये ब्लाइंड लोगों का। तो सोचा कि भाई ये इसका डिजाइन वर्क उनसे करवा दे, और ये ब्रूम स्टिक और कुछ कॉटन फाइबर के यूज करके उसने वो इसका हैंडल बनाया है। बहुत अच्छा से वो बनवाता है, और जो भी मिस्टेक्स, जो हम मिस्टेक्स बोलता है उनको, लेकिन वो तो इट्स एक्चुअली पार्ट ऑफ द डिजाइन ब्यूटी। सो वी आई से दैट यू नो, इफ यू कैन स्पॉट एन इरेगुलरिटी, इट शोज दैट यू कैन सी, यू कैन एक्चुअली सी दैट एंड यू कैन स्पॉट दैट डिफरेंस इन द व्यू, विच कैन नॉट बी एक्चुअली आइडेंटिफाइड और रिकग्नाइज्ड स्पॉटेड बाय द ब्लाइंड वुमन। सो ये एक सिंबल ऑफ विजन बन जाता है ये ब्रूम।
0: सिर्फ झाड़ू ही नहीं, लक्ष्मी ने बहुत से अन्य प्रोडक्ट भी सफलतापूर्वक बनाए हैं, जैसे क्विल्ट, आर्नामेंट्स, ज्वेलरी, आर्ट पीस इत्यादि। समाज के एक वर्ग नेत्रहीन महिलाओं के लिए नई राह दिखाने में लक्ष्मी मेनन की पहल सराहनीय है।
1: ये चूलाला आर्टिसनल ब्रूम कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें क्राफ्ट है, इट्स हैंडमेड है, लोकल मटेरियल्स यूज किया है। आर्टिसनल ब्रूम तो हमेशा बहुत ही एक्सपेंसिव, और वो तो एक डिजाइन एक्सेसरी के कैटेगरी में आता है। तो ये चूलाला भी लोग उनके लिविंग रूम, ड्राइंग रूम में एक डिस्प्ले पीस जैसा डिस्प्ले करता है, और इसका भी ये ब्यूटी है और फंक्शन भी है, क्योंकि इसको डस्टिंग करने के लिए, क्लीन करने के लिए इस्तेमाल भी करते हैं लोग, करते हैं। हम इसके ऑनलाइन और से शॉप्स में, सिलेक्टेड शॉप्स में और इवेंट्स में गिफ्ट आइटम जैसा ऐसा ही सेल इसका होता है। बहुत ही डिमांड है इसका, और हम इसको थोड़ा और डिजाइन में वैरायटीज लाने के लिए इनको ज्वेलरी भी बनाते हैं अब ब्रोच बनाता है, ब्राइडल ज्वेलरी भी अभी इसके बनाता है अब डिजाइन करके। तो वेरी यूनिक एंड वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, वेरी सस्टेनेबल एंड ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट बना सकता है इससे, और इसका डिमांड भी बहुत अच्छा है। इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए आपने ये प्रोग्राम भी कर रहा है, उसको हम बहुत आभारी हूँ।

0: Thank you so much for supporting and making it and letting and making it spread far and wide. It will really help the blind women and people like us who take up the effort to kind of bring such initiatives. Thank you very much.
1: कोई भी पहल भले दिखने में छोटी लगे लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत जाती है. लक्ष्मी मेनन की पहल इसका उदाहरण है. लखनऊ से फैसल फरीद.
2: तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे ना कि कितनी ही एक महत्वपूर्ण और कितनी ही अलग से एक बात की, एक पहल की है और उसके पीछे मकसद कितना अच्छा है. वैसे एक अजब सी बात हुई है कि आज कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपसे जानना चाहती थी कि हिंदी फिल्मों के कॉमिक गानों के बारे में, और हमारे श्रोता राजेंद्र जी ने एक दर्द भरे गाने की फरमाइश भी कर दी है. तो राजेंद्र जी, आपकी पसंद तो नोट कर ली है, शामिल करने का प्रयास भी रहेगा. फिलहाल मिलते हूँ इस अंतराल के बाद में, और सोच के रखिए कि कोई ऐसे कॉमिक गाने जो आपको याद आते हों.
3: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
4: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
5: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
4: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
6: I'm on top of the world!
4: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
7: रात को खाना भूल गए, देर रात किराने का सामान चाहिए, रात 10 बजे कुछ मीठा हो जाए. लकेम्बा में हेल्डन स्ट्रीट दिन रात खुली रहती है. गर्मा गर्म लेबनानी कबाब, मोरक्को के जायकेदार टजीन, बांग्लादेशी मिठाइयाँ और देर रात ताजे किराने के सामान का मजा लें. अंधेरा होने के बाद दुनिया भर के खाने का एक उत्सव, सुरक्षित, मजेदार और विविधताओं से भरा. यहाँ हमेशा कुछ न कुछ हो रहा होता है. अपना अगला देर रात का खाना wih.city/lakemba पर पाएं. Lakemba, एक अलग ही दुनिया के लिए आपका पासपोर्ट.
8: Starting a new life in Australia isn't easy.
9: A lot of companies have rejected me.
10: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
8: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
11: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर. हमारा पेज लाइक करें. SBS हिंदी फेसबुक पर भी है. sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए. ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए. sbs.com.au/hindi पर जाएं.
2: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार. हमारे श्रोता कुमार जी का भी संदेश है और उन्होंने एक गाने के बारे में लिखा है जो ले आता है उनके चेहरे पर मुस्कुराहट, लेकिन ये मुस्कुराहट होती है आशा भरी. और आज मैं कुछ इस तरह की बात करना चाह रही हूं कि जो जिसको सुनते ही आपको खिलखिलाहट आ जाए. चेहरे पर मुस्कुराहट तो आएगी, लेकिन आप उस सीन को याद करके या कुछ लगे कि हाँ, ये कोई बात ही थी, कुछ अलग ही बात थी. तो बात यूं ही हुई थी, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि अचानक से एक पुराने गाने की बात चल रही थी टीवी पर, और उसी से ही मुझे लगा कि हाँ, ऐसे तो बहुत सारे गाने हैं. और उसमें मुझे एक गाना याद आया है, तो बहुत पुराना सा, लेकिन आप आज भी उसको कभी कभी सुन लेते हैं. अब इस गाने की जो हीरोइन है उसका नाम है मीरा शोरी। मीरा शोरी, ये हल्का फुल्का पंजाबी हिंदी का गाना कैसे कैसे याद किया जाता है।

0: जानते हैं, ये गाने से मीना शौरी को तुरंत फेम मिल गई थी और इस फिल्म को भी एक अच्छी खासी पहचान मिल गई थी। ये फिल्म में उनके साथ थे मोतीलाल और आयश जौहर। मीना शौरी का करियर तो पीक पे चला गया था, लेकिन फौरन ही वो गुमनामी में ही खो गया। और जानते हैं, 1989 में, यानी 1989 में जब उनकी मृत्यु हुई, तो कहते हैं कि उनके दफनाने का खर्च भी किसी चैरिटी ने उठाया था। तो ऐसा है ये चमकता हुआ संसार, और आइए चलते हैं बॉलीवुड की दुनिया में और जानते हैं कि आजकल वहां पर क्या हो रहा है।
1: SBS रेडियो हिंदी के प्रोग्राम बॉलीवुड टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा। बॉलीवुड टाइम में सबसे पहले बात करते हैं फिल्म डॉन 3 की। रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच डॉन 3 को लेकर शुरू हुआ विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म से बाहर होने के बाद रणवीर ने फरहान के साथ रिश्ते सुधारने और भविष्य में किसी नए प्रोजेक्ट पर साथ काम करने की इच्छा जताई थी, लेकिन उनकी कोशिश सफल नहीं हो पाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर सिंह ने फरहान अख्तर और उनके प्रोडक्शन पार्टनर रितेश सिद्धवानी को किसी नए प्रोजेक्ट पर साथ काम करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे दोनों पक्ष मिलकर चुनते। हालांकि सूत्रों के अनुसार ये प्रस्ताव तुरंत ठुकरा दिया गया। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि फरहान अख्तर और उनकी बहन जोया अख्तर फिलहाल रणवीर के साथ दोबारा काम करने के इच्छुक नहीं है। आलिया भट्ट और शार्वरी वाघ की मुख्य भूमिका वाली एक्शन फिल्म अल्फाब अपने तय समय से एक हफ्ता पहले यानी 3 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। पहले ये फिल्म 10 जुलाई को आने वाली थी। फैंस आलिया को एक्शन अवतार में देखने के लिए बेताब हैं। फिल्म धमाल 4 की रिलीज डेट 17 जुलाई तय होने के बाद अल्फा के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने ये फैसला लिया है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार आने वाली फिल्म वेलकम टू द जंगल में 2007 की हिट फिल्म वेलकम के क्लासिक गाने ऊंचा लंबा कद का जादू फिर से बिखेरने के लिए पूरी तरह तैयार है। गाने के इस नए वर्जन को आनंद राज आनंद और रुबाई ने अपनी आवाज दी है। अभिनेत्री करिश्मा कपूर की आगामी वेब सीरीज ब्राउन के मेकर्स ने ट्रेलर रिलीज कर दिया है। ये कोलकाता की पृष्ठभूमि पर आधारित एक डार्क साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर है। ये सीरीज कोलकाता की रहस्यमय पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसके केंद्र में करिश्मा का किरदार रीटा ब्राउन है, जिसे करिश्मा कपूर निभा रही है। रीटा कभी शहर की सबसे बेहतरीन पुलिस अधिकारियों में गिनी जाती थी। वेब सीरीज में अभिनेत्री पुलिस अधिकारी रीटा ब्राउन का किरदार निभा रही है। रीटा ब्राउन का किरदार जितना अपने साहस के लिए मजबूत है, उतना ही अपनी कमजोरियों और खामोशी के कारण भी खास और प्रभावशाली है। भारतीय सिनेमा को कई सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाला मशहूर प्रोडक्शन हाउस होमब्ले फिल्म्स अब एक नए और अलग अंदाज की कहानी लेकर आने जा रहा है। मेकर्स ने अपनी पहली हिप हॉप म्यूजिकल स्टोरी ये तो का नायक की घोषणा कर दी है। इस फिल्म के जरिए प्रोडक्शन हाउस युवाओं की दुनिया, उनके सपनों और म्यूजिक कल्चर को बड़े पर्दे पर पेश करेगा। इस प्रोजेक्ट को केवल एक भाषा तक सीमित नहीं रखा गया है। फिल्म के हिंदी वर्जन YKN पहला वॉर का भी ऐलान किया गया है। हिंदी फिल्म संगीत की बात जब भी होती है तो बॉलीवुड के

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
2: Would be better if I was French.
0: BoatU has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help BoatU cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
0: It feels good to be BoatU. It feels good to Geico.
3: बॉम्बे हाई कोर्ट में 400 करोड़ रुपए का केस किया है। ये विवाद वरुण धवन की आने वाली फिल्म है जवानी तो इश्क होना है में 1999 की हिट फिल्म बीवी नंबर वन के दो गानों के इस्तेमाल को लेकर है। वासु बगनाने का दावा है कि टिप्स के पास इन गानों के विजुअल राइट्स नहीं है। उन्होंने फिल्म की रिलीज रोकने और इसका टाइटल बदलने की मांग की है। फिल्म 5 जून 2026 को रिलीज होने वाली है। इसमें बीवी नंबर वन के दो मशहूर गानों चुनरी चुनरी और इश्क सोना है को रिक्रिएट किया गया है। पूजा एंटरटेनमेंट ने फिल्म की रिलीज, डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रीमिंग पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। नया म्यूजिक वीडियो मनवा मेरा रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। मनवा मेरा सिर्फ एक रोमांटिक गाना नहीं बल्कि एक इमोशनल म्यूजिकल एक्सपीरियंस है। अभिनेता ईशान खट्टर, हॉलीवुड अभिनेत्री क्रिस्टन स्टीवर्ट और अन्य कई जाने माने नामों के साथ बियारिट्स फिल्म फेस्टिवल के चौथे एडिशन में जूरी पैनल में शामिल होंगे। ईशान खट्टर के इंटरनेशनल करियर की शुरुआत उनकी पहली फिल्म बियॉन्ड द क्लाउड से ही हो गई थी। इसके बाद उन्होंने 2021 में लियोनार्डो डिकैप्रियो और जेनिफर लॉरेंस स्टारर फिल्म डोंट लुक अप में एक कैमियो भूमिका निभाई। उनकी 2025 में आई फिल्म होम बाउंड को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया था और इसे शॉर्टलिस्ट भी किया गया था। अशोक खरात का नाम तो हर किसी ने ही सुना होगा। अशोक खरात पर आरोप है कि उन्होंने कई महिलाओं का यौन शोषण और उन्हें प्रताड़ित किया। इसी बीच खबर मिली है कि इस मामले पर फिल्म बनने जा रही है जिसमें लीड रोल के लिए इमरान हाशमी का नाम सामने आया है। अब इस मामले पर महाराष्ट्र एप्स्टीन फाइल्स नाम की फिल्म बन रही है जिसको स्वरूप सावंत डायरेक्ट करने वाले हैं। डायरेक्टर इम्तियाज अली इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म मैं वापस आऊंगा को लेकर चर्चा में है। उन्होंने फिल्म के गाने मस्कारा की शूटिंग को लेकर एक मजेदार किस्सा बताया। उन्होंने बताया कि इस गाने की शूटिंग पंजाब के मरेल कोटला शहर में की गई, जो यह वही शहर है जहां से इरशाद कामिल ने अपने सपनों की शुरुआत की। फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग से बॉलीवुड और साउथ में अपना नाम कमाने वाली एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। वो टोक्यो में ग्लोबल एनिमे अवार्ड्स में बतौर प्रेजेंटर शामिल हुए। ये पल उनके लिए काफी खास रहा। खास बात यह है कि रश्मिका इससे पहले भी 2004 में इस अवार्ड शो का हिस्सा रह चुकी हैं। अली फजल और सोनाली बेंद्रे स्टारर आगामी इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर सीरीज राख की रिलीज डेट अब सामने आ गई है। मेकर्स की ओर से सोशल मीडिया पर सीरीज से अली फजल का एक पोस्टर साझा किया गया है। इसके साथ कैप्शन में मेकर्स ने लिखा, दबे हुए सच हमेशा अपना रास्ता खोज ही लेते हैं। राख 12 जून से ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम करेगी। बॉबी देओल स्टारर फिल्म बंदर का नया गाना पिंजरा रिलीज कर दिया गया है।
4: दाम पिंजरा बैल बन के कर रहा वो काम पिंजरा, वो काम पिंजरा।
3: बॉलीवुड टाइम में आज बस इतना ही। बाय बाय।
5: तो श्रोताओं, बॉलीवुड की खबरें तो आपने सुनी और इस बीच में याद दिलाती चलूं कि इससे पहले जो आपने गाना सुना था, मुझे लगता है उससे कईयों की यादें भी ताज़ा हुई होंगी। जैसे हमारे श्रोता कुमार जी की याद ताज़ा हो गई अपने पिता को लेकर कि ये गाना उनके पिता की पसंद का था। जी हाँ, ये फिल्म थी 1950 के आसपास की, नाम था एक थी लड़की। और हमारे श्रोता कुमार जी ने एक गाने की भी हमें याद दिलाई है। उस गाने को कोशिश करूंगी कि कार्यक्रम में शामिल कर सकूं, लेकिन फिलहाल मैंने जो गाना आपके लिए चुना है ये एक मशहूर फिल्म का गाना है। और वैसे ये फिल्म बहुत ही गंभीर मुद्दे के बारे में थी, लेकिन ये गाना उसमें एक अलग ही तरह की बैलेंस बना देता है, ये कहना चाहिए। और जो ये फिल्म है, इसका साउंड ट्रैक आज भी कई गीतकारों और कंपोजर्स के लिए प्रेरणा है। और इस फिल्म को, जिस फिल्म की मैं बात कर रही हूँ, 2004 में ब्रिटिश

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: SBS हिंदी हर समय उपलब्ध है। जब भी आप चाहें किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुनें। sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करें। अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है।
5: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। हमारे श्रोता रमा भारद्वाज जी ने भी कुछ गानों की याद दिलाई है। अब असल में ऐसा हो गया है कि लगता है कि इतने सारे कॉमिक गानों की जो लिस्ट आ गई है मेरे पास में, मुझे लगता है कि एक बार और उन्हीं गानों के ऊपर कार्यक्रम करना होगा। और हाँ, ये बताती चलूं कि अंतराल से पहले जो गाना आपने सुना था वो फिल्म प्यासा का था, और हमारे श्रोता कुमार जी ने और एक दूसरे श्रोता हैं उन्होंने भी अपना नाम तो नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने लिख दिया है कि वो फिल्म प्यासा का था और इसे फिल्माया गया था जॉनी वॉकर के ऊपर। और कई लोग मेरे इस बात से सहमत तो होंगे कि जॉनी वॉकर को पर्दे पर देखते ही आपको हंसी तो आ ही जाती है। और ऐसे ही एक और कलाकार हैं जिनको आप पर्दे पर देखते हैं तो आप बस सोच लेते हैं कि अब तो कुछ हंसी की बात होगी ही, क्योंकि वो दौर ही ऐसा था, वो जाने ही इसी काम के लिए जाते थे कि वो फिल्म में कुछ कॉमेडी का रंग लेकर आएंगे। मुझे लगता है शायद आप सोच ही रहे होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महमूद की। और एक फिल्म थी प्यार किए जा, उसमें एक गाना है उनका मुमताज के साथ में, तो बड़ा ही एक दिलचस्प सा गाना है, उनका डांस भी बहुत मज़ेदार है। तो यानी गाना तो है ही सुनने में, और अगर आप वीडियो देखेंगे तो और हंसी की बात बनती है।

दिल मेरा चाहे कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुटर दूं, दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार बार चूमूं। दिल मेरा चाहे कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुटर दूं, दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों

और श्रोताओं, आपको याद होगी फिल्म चलती का नाम कड़ी, किशोर कुमार, अशोक कुमार, अनूप कुमार और उनके साथ में थी मधुबाला। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि कभी मधुबाला भी इस तरह के रोल में दिखाई देंगे।

जमाना तू। तो आप ये गाना तो सुन रहे थे और पराग जी आपका भी संदेश मिला है, आपने भी याद दिलाया है उस गाने के बारे में जिसे हमारे कई श्रोताओं ने याद किया, तो बस फिर इसे सुनवाए बिना तो बात नहीं बनती, इसलिए क्यों ना सुनते चलें वो गाना जिसमें हास्य कलाकारों का लगा था जमा वेड़ा। और नाम जी आप पहचान ही गए होंगे, फिल्म पड़ोसन, जिसमें है सब कुछ, प्यार, कॉमेडी और भी बहुत कुछ। ये गाना बिल्कुल सदाबहार गानों में से एक है और सुनते ही क्या उसके बारे में कहें, बस दिल करता है इसको बार बार सुनते रहें, इसके वीडियो को देखते रहें या फिल्म को देखते रहें।

आपको इन्हीं सुरों के साथ छोड़े जा रही हूँ। अनीता बरार का नमस्कार, अगली मुलाकात तक के लिए।